देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की अलकपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान दीप नारायण भगवान सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति।

श्री श्री देव पुरी समादेव धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन ओम शांति शांति

0: ओम सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम सोहम सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम श्री अलकपुरी जी महादेवाय की जय हो। अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवपुरीषा महादेव की, हरि गुरुदेव भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम हंस स्वामी महाशयानंद पुरी जी गुरुदेव की जय।
0: Hey, where the air is going? Air is going from this side.

0: ज्ञान की देवाधिदेव देव पुरुषा महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान अलकपुरी जी महादेव जय। ओम नमो श्री प्रभु दीप नारायणम। हम सब दास प्रभु, हम मीन्स वी ऑल,
1: हम znamená my všichni,
0: हम सब वी ऑल,
1: हम सब।
0: ओम नमो श्री, श्री मीन्स द विक्टोरीज और समथिंग,
1: श्री znamená vítězství,
0: श्री इज प्रॉपर्टीज,
1: je to prospěch,
0: personalities, many many things,
1: mnoho věcí।
0: ओम नमो श्री प्रभु, प्रभु इज द नेम ऑफ द गॉड,
1: प्रभु ये मेनो बोहा,
0: यस गुरु। ओम नमो श्री प्रभु दीप नारायणम, दीप इज द लाइट,
1: दीप ये स्वेतलो,
0: एंड दिस लाइट शुड बी एवर एंड एवर,
1: आ तो स्वेतलो बी मेलो बीत नावजदी,
0: नॉट लाइक दिस फ्लेम,
1: jako tento plamen,
0: but all we in our heart there is a flame,
1: ale v srdci každého z nás je plamen,
0: everyone we have day and night,
1: každý z nás ho má ve dne i v noci,
0: and that day when this flame will go, it means gone,
1: a ve chvíli

अद्वैतम सतगुरु तम नमाम्यम ओम दीप ज्योति पर ब्रह्म दीपम सर्वे मोहनम दीपन सजते सर्वं संध्या दीपम सर्व सत्यम

ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यं ओम शांति शांति शांति। दीप नारायण भगवान की जय। देवेश्वर महादेव की जय। माधव कृष्ण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर वंस, सैल्यूटेशन टू द कॉस्मिक लाइट, एडोरेशन टू द डिवाइन मास्टर्स and welcome all of you.

0: गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आदरणीय मंचस्थ महामंडलेश्वर जी, ज्ञानेश्वर पुरी जी, जोधपुर से पधारे हुए महामंडलेश्वर जी और कपिल जी, फूलपुरी जी, महामंडलेश्वर फूलपुरी जी महाराज, राजेंद्र पुरी जी और यहाँ के सभी अध्यापक वृंद, आए हुए हमारे अतिथि झूमरलाल जी और समस्त विद्यार्थी गणों, आज के शुभ अवसर पर आज द्वादश ज्योतिर्लिंगेश्वर महादेव का द्वितीय पाठोत्सव को हमने मनाया है और बड़े धूमधाम समारोह पूर्वक महादेव जी का अभिषेक करते हुए हमने उनका शुभारंभ किया है और दूसरा पाठोत्सव इसको हमने बनाया है। इसको वर्षगांठ भी कहते हैं और वास्तव में इसको पाठोत्सव भी कहते हैं। पाठोत्सव का अर्थ है पाठ का मतलब खोलना और उत्सव का मतलब सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी पाठोत्सव तो हमने मनाया। इस अवसर पर मैं अपने दो शब्द आपको, क्यों चूंकि विद्यार्थी हमारे समक्ष बैठे हैं और गुरुजन हमारे समक्ष बैठे हैं तो एक छोटी सी बात आपको कहता हूँ। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, क्योंकि स्वामी महेश्वरानंद जी ने दैनिक जीवन में योग की परंपरा को स्थापित करते हुए हमारे देश के साथ साथ संपूर्ण विश्व को भी अपनी एक शिक्षा दी है। दैनिक योग के साथ साथ आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, आहार को शुद्धिकरण करने के लिए उन्होंने बल दिया। हम भारतीय लोग भी आहार शुद्धि रखते हैं और आहार शुद्धि रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि आहार से हमारा मन शुद्ध होता है। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व का मतलब हमारा ये शरीर, भौतिक शरीर, हमारा जैसा भोजन होगा वैसा ही हमारा शरीर होगा। इसलिए आयुर्वेद में, सुश्रुत ने, बड़े बड़े चरक आचार्यों ने आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, अगर हमारा ये सत्व, हमारा शरीर एकदम अच्छा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा तो हमारे स्मृति जो को, जिनको कहते हैं मेमोरी, स्मृति, ये एकदम स्थायी रूप से हो जाएगी और जो भी हम याद करेंगे वो तत्काल हम पूर्ण रूप से उसको याद कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। वो एक पुस्तक को आगे से पढ़ना प्रारंभ करते थे, पीछे तक पढ़े बिना उस पुस्तक को छोड़ते नहीं थे और उसको पूरा पढ़ करके उसका पूरा पूरा नॉलेज क्या होता है वो स्वामी विवेकानंद जी को तत्काल ज्ञात हो जाता, क्योंकि आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि, ध्रुवा स्मृति। तो बच्चों, हमें अपने आहार को सुधारना है। यदि आहार सुधर गया तो हमारे मस्तिष्क, मन मस्तिष्क और पूरा वातावरण सुधर जाएगा। तब आप लोग कह सकते हो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्। मैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तक अवतरित होता हूँ। वो ईश्वर आप में ही अवतरित होगा, अपने आप को स्वयं को बनाएंगे तो अवश्य ही इस पूरे संसार में विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम जागृत कर पाएंगे। तो बच्चों, विवेकानंद जी ने भी कहा है उठो, जगो और चलो अपने मार्ग पर। आपका कौन सा मार्ग है जो आपके प्रारब्ध ने आपको निश्चित करके संसार में भेजा है? इतना कह करके एक साथ एक भगवान की धुनि करते हैं। आप भी मेरे साथ बोलेंगे दीप निरंजन सब दुख भंजन, दीप निरंजन इसी मंत्र से होवे सब मंजन, प्रभु से दीप निरंजन सब दुख भंजन। आज इतना ही, धन्यवाद। आपने हमको सुना और आचार्य आचार्यों के सभी चरणों में श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। और ऐसे कार्यक्रमों में बार बार पधारते रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम बार बार होते रहे हैं। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। बोले श्री दीप नारायण भगवान की, होली गुरु जी माधवानंद जी गुरुदेव की, देवपुरीसा महादेव की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद जी गुरुदेव की, आज के आनंद के।
1: गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मे से गुरुदेव नमः। सबसे पहले मेरे पूज्य गुरुदेव विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी के चरणों में वंदन करता हूँ। और आज स्वामी जी ने आपको सब बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। मैंने अभी आपकी सबकी फ़ोटो स्वामी जी को भेजी है, तो वो बड़े खुश हुए हैं और उन्होंने आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। मंच पर विराजमान हमारे महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी जी, महामंडलेश्वर स्वामी फुलपुरी जी, जोधपुर से आए हुए हमारे संतजन, हमारे राजेंद्रपुरी जी, छगन जी, चंदन जी, हमारे माधव जी, और हमारे विदेशी भक्त जो इस कार्यक्रम को यहाँ से लाइव देख रहे हैं अपने अपने देशों में, और इस स्कूल के आपके सुरेश जी गर्ग और इतने सारे बच्चे जो यहाँ आए हैं, आप सबका मैं स्वामी जी की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सबको ये विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि वैसे तो आपको पता ही है कि आज हमारा जो दुनिया का आठवां अजूबा है ओम आश्रम, उसकी सेकंड एनिवर्सरी है। मतलब आज के दिन हमारे इसकी उद्घाटन हुआ था, 2 साल हो गए हमारे इसको बने हुए, उद्घाटन हुए हुए। तो इस आश्रम के बारे में और स्वामी जी ने जो ये बनाया है आश्रम के बारे में, मैं सब बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में ये पहला मानव निर्मित भवन है जो हमारे गुरुदेव ने बनाया है। तो हमें ये गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारे भारत में और हमारे राजस्थान में एक ऐसा अजूबा है जो पूरे विश्व में और पूरे ब्रह्मांड में ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। तो हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, और इसकी सारी जो ख्याति है और जो इसकी जो महिमा है वो सारी हमारे जो साधु संत हैं जो यहाँ पे विराजमान हैं, आप देखेंगे विदेशों से भी बहुत सारे लोग आते हैं। ये पहला ऐसा सेंटर है जिसमें करीबन इतने सारे विदेशी लोग आके यहाँ पे पूजा करते हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है। हमारा सनातन धर्म में जो ताकत है वो पूरी स्वामी जी ने विदेशों तक फैलाई है, और उसके लिए हम स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। हमें खुशी है कि इतने सारे बच्चे इस उम्र में अगर आके और जिस सनातन धर्म का ये सुन रहे हैं ओम आश्रम के बारे में, तो ये एक हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी शक्ति है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
2: ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वान्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलमचलं सार्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। इस मंत्र के साथ मैं हमारे पूज्य गुरुदेव विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम स्वामी महेश्वरानंद जी को प्रणाम करता हुआ, अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोलूंगा। आपको तो वैसे सबको इंग्लिश तो आती है, क्योंकि आधा आधा इंग्लिश तो बोलते ही रहते हैं। सो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सेकंड एनिवर्सरी ऑफ ओपनिंग ऑफ ओम आश्रम। Today we have a great guest. We can say our friends, our colleagues, our well-wishers. Mahamandaleshwaram Shri Swarupananji Maharaj from Jodhpur. He is excellent speaker on all kathas or Ramayan, on Shiv Puran, Bhagavad Katha. He speaks on Advaita Vedanta, on Upanishads, in many places. He has his ashram in Jodhpur, Ahmedabad. He's traveling very often, and many, many places. Beside him, you can see our Swami, Mahamandaleshwar Swami Chetan Giriji Maharaj from Sojat, he's connected with us for the last 40 years. So I'm welcoming both of them to our ashram. Mahamandalesha Swami Fulpuriji doesn't need any introduction. He is part of our family. Acharya Rajendra Puriji is also here. And we have also on one side, we have Kapilji Agarwal from Jaipur, a big businessman. And our Mother Prasad Sharma, who taught many of us Bhagavad Gita and many other shlokas. So I welcome him also. We have here Chandanji, Chaganji, all the Nepal Rani, all our friends are now on the stage. So this is the opportunity to remember that Swamiji did a miracle. He managed to create a big ashram, such amazing structure that we can even call it the eighth wonder of the world. I was just now in Bikaner and I saw that even the king took a lot of time to make some temple. But Swamiji managed to overcome so many problems, so many things, and he managed to give to the world, to the India, this amazing Om Ashram, Dvadash Jyotirling, and all us together united under one roof. तो बाप जी ने जो यहाँ काम किया था एक चमत्कारी बात है चाहे 25 साल 30 साल लग गया लेकिन संपूर्ण हो गया जो आप सुन रहे थे एक जुबा है एक चमत्कार है ये मंदिर बनाना बहुत मुश्किल काम होता है और ऐसे बड़ा मंदिर बनाना इससे डबल गुना बड़ा है तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग स्कूल से पधारे स्कूल हमारे निदेशक साहब को और सारे टीचर को मैं धन्यवाद देता हूँ और आपकी इतनी शांति से बैठे मैं सबको धन्यवाद देता हूँ इस शब्दों के साथ जय श्री राम

0: इसलिए विद्यार्थी के लिए जीवन के अंदर गुरु से बढ़कर के और कोई तत्व नहीं है, ना गुरु और अधिकम तत्व। गुरु शब्द का अर्थ है जो हमारे पूज्य गुरुदेव मेसरन जी ने पूरे विश्व के अंदर जिस ज्ञान का प्रकाश फैला करके पूरे विश्व के प्राणियों का ध्यान भारत भूमि की तरफ, और उसी भारत भूमि के अंदर राजस्थान प्रदेश, और राजस्थान के अंदर ही भी वो पाली डिस्ट्रिक्ट, पाली जिला, और पाली जिले के अंदर ही ये पाली और सोजत के बीच में ये डाडन जो भूमि है, जहां पर जो अभी अभी बताया गया कि विश्व का ये आठवां अजूबा जो ओमकार का स्वरूप में यहां पर दिव्यता से उत्पत्ति से ओम आश्रम की स्थापना, तो वो जो ज्ञान जो अपन को अज्ञान पे अंधकार से हटा करके ज्ञान पे प्रकाश की तरफ जो अपन को बढ़ाए, उनको गुरु कहा गया है। अपन आज कम से कम यहां पर अभी जो विद्यार्थी है करीब 480 और 500 के बीच में यहां पर विद्यार्थी बैठे हैं। अपन सब यहां से अपने जीवन का तत्व जान रहे हैं। हाँ, आप एक भाषा को तो सीख रहे हैं, इंग्लिश भाषा है, संस्कृत है, हिंदी है, ये सब भाषा जीवन के तत्व को जानने का एक माध्यम है। गुरु से बढ़कर के इस जगत के अंदर कोई ऊंचा नहीं है, ना गुरु अधिकम तत्वम। गुरु से बढ़कर के कोई जीवन के अंदर अपना तत्व नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, ना गुरु अधिकम तप। गुरु से बढ़कर के कोई तप नहीं। हमने देखा है कि जिस समय इस आश्रम की यहां पर कुछ नहीं था, जंगल था, बबूल आदि यहां पर झाड़ियां खड़ी थी, परंतु विश्व गुरु महामंडलेश्वर जमेश्वरानंद जी महाराज की वो शुभ दृष्टि का पात हुआ इस भूमि पर। उनकी जब नजर यहां पर पड़ी तो यहां पर देखिए, जहां संत है वहां वसंत है। यहां पर पूज्य गुरुदेव की नजर पड़ी और गुरु जी का महादानंद जी की भी कृपा हुई, और यहां पर इस जहां पर कांटों की झाड़ियां थी, आज यहां पर पूरे विश्व के अंदर लोग यहां पर पर्यटक के रूप में आ रहे हैं। ये संत, जहां संत है वहां वसंत है। वसंत का मतलब आनंद है, और जिस आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है, ओपोजिट वर्ड नहीं है। सुख का दुख है, लाभ कहानी है, जय का पराजय है, परंतु आनंद का कोई विलोम ओपोजिट शब्द नहीं है। तो ये गुरु की ही तप तपस्या है कि एक 25 साल के अंदर इतना भव्य। सही पूछो तो कभी कभी तो हमारे मन में भी आता था कि महेश्वरानंद जी महाराज ने इतना बड़ा ओमकार का ये स्वरूप जो आकृति ली है, ये किस तरह से पूर्ण होगा, क्योंकि मनुष्य का जीवन एक क्षणिक जीवन होता है। किस समय क्या हो सकता है, अगले पल की जिनकी कोई खबर नहीं। और वो आज ध्यान देना बच्चों, ये गुरुजी की बहुत ही महत्व तप है, जिनसे तब से जाकर के उनके जीवन काल में ही ये ओमकार स्वरूप का जो विश्व का आठवां अजूबा है बनकर के आपके हाथों से ही 2 साल पहले सभी संत महापुरुषों के सानिध्य में यहां पर इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो ना गुरोर अधिकम तत्वम, ना गुरोर अधिकम तपः, गुरु से बढ़कर के और कोई तप नहीं हो सकता है। ना गुरु अधिकम तत्त्वम ना गुरु अधिकम तप, तत्व ज्ञानात परम नास्ति। ध्यान देना, इसी ओम आश्रम से जो भारत भूमि, जो ऋषियों की भूमि है, ये तपोभूमि है, जहां भारत से सदैव और जिस विद्या के कारण, जिन ज्ञान के कारण भारत विश्व गुरु कहलाया और आज भी है, ऐसी बात नहीं, जो ब्रह्म विद्या है, जो हमारे वेदों का अंतिम भाग जो उपनिषद है, उपनिषद के अंदर जो ब्रह्म विद्या है, वो ब्रह्म विद्या का ज्ञान भारत को छोड़ करके और विश्व के अंदर कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और वो ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म विद्या जो समस्त विद्याओं की राजा है, जो गोपनीय विद्या है, वो गोपनीय विद्या यहां ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदान की जाती है। ना गुरुर अधिकम तत्व ना गुरुर अधिकम तप, तत्व ज्ञानात्, जो ब्रह्म विद्या संपूर्ण विद्याओं का सार है, वो ज्ञान का सूत्र इस ओम आश्रम से निरंतर। और गुरुजी ने पूरी पृथ्वी का, जो वसुंधरा है, अनेकों बार पूरी वसुंधरा का भ्रमण करके, एक बात और समझना, पूज्य महेश्वरन जी ने पूरी पृथ्वी का अनेक बार भ्रमण करके इस वसुंधरा और पूरे ब्रह्मांड का सार जो वेदों के अंदर भी बताया है, वो ओमकार उस निचोड़ को अपने जीवन में साधना बना करके, उस साधन तत्व को यहां पर इस भारत भूमि पर, अपनी ये डाडन की भूमि पर उन्होंने स्थापित करके जगत के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि जीवन का यदि कोई सार है तो वो ओम ही है। इसलिए ध्यान देना, आवता हरि ओम बोलो, बैठते भी हरि ओम बोलो, उड़ते भी हरि ओम बोलो, सुबह भी हरि ओम बोलो, उगरते प्रभात आप हरि ओम बोलो, यही जीवन का सार है, जीवन का तत्व है। आज बहुत बड़ी प्रसन्नता है बच्चों, अपने जीवन के अंदर श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होती है, जो अपने गुरुजनों के प्रति, गुरु का मतलब आप समझ लेना, गुरु से जिनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो तो गुरु है ही है, परंतु हमारे परिवार में भी, हमारे कुटुंब के अंदर भी, जो हमारे बुजुर्ग है, जो बड़े हैं, उनके प्रति भी हमारा आदर होना चाहिए, सत्कार के साथ में आदर रहेगा, उनके प्रति हमारा मान रहेगा, सम्मान रहेगा, उनके प्रति पूर्ण शरणागति होगी, समर्पण होगा, उनके चरणों के अंदर जब अपन अपने जीवन को पूर्ण निच्छावर कर देंगे, तभी जाकर के वो तत्व का ज्ञान अपन को प्रकाशित होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बिना श्रद्धा के, और वो भी श्रद्धा कैसी, आदर युक्त। एक श्रद्धा तो वो भी होती है भैया, जैसे अपने जीवन भर कठिन परिश्रम करके जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं और बैंक में जाकर के जमा कराते हैं, और वहां पर बैंक मैनेजर केवल एक सिग्नेचर करके देता है, वहां केवल बैंक मैनेजर के सिग्नेचर के ऊपर हमारी श्रद्धा है, परंतु उसी बैंक मैनेजर को यदि कभी अपन पैसा लेने के लिए वापस जाते हैं और बराबर जब कोई टॉकिंग नहीं होती है तो बाहर आकर के उसी मैनेजर को हम भला बुरा कह देते हैं, तो वो केवल श्रद्धा, वहां केवल कोरी श्रद्धा है, वो आदर नहीं है। यदि हमें अपने गुरुजनों से, अपने परिवार में जो बड़े बूढ़े हैं, उनसे हमारी जो कुल की जो परंपरा है, कुल की जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उस ज्ञान को यदि अर्जित करना है बच्चों, तो अपने परिवार के अंदर जो बूढ़े बुजुर्ग है, जो वयोवृद्ध है, हम उनके पास में बैठे। आजकल किसी को बैठने का समय नहीं है, क्योंकि हम सब अपना वो हाथ में लेकर के चलाते रहते हैं। कभी हम अपने परिवार के जो बूढ़े बुजुर्ग माता पिता है, दादा दादी है, उनके पास में बैठेंगे तो बहने भाइयों बच्चों, जीवन का बहुत बड़ा तत्व अपन को जानने को मिलेगा। और जब तक हम उनके पास में नहीं बैठेंगे तो हमारी कुल की जो संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, उस संस्कार का अपने हृदय के अंदर आत्मसात नहीं होगा। तो हम यहाँ पर गुरु जी के चरणों में बैठे हैं आज, यहाँ पर यही कामना करें कि हे भगवान, वो शक्ति दे, वो बल दे, वो सामर्थ्य दे कि हम अपने जीवन के अंदर जो जीवन का तत्व है उसको हम प्राप्त कर ले। जीवन, मनुष्य जीवन जिसमें सार्थक होवे, वो सार्थकता हमको प्राप्त हो जावे, इतनी हम गुरु के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
1: शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योम बद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विश्व में धर्म प्रधान भारत देश, उसमें भी पुण्यतम पवित्रतम सतियों एवं रणबांकुरों की भूमि मारवाड़ राजस्थान के पाली जाडन विश्व प्रसिद्ध ओम दीप गुरुकुल के प्रांगण में परम श्रद्धेय परमादरणीय अर्चनीय वंदनीय धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस प्रभाजकाचार्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज के बाद विश्व में सर्वाधिक भ्रमण करने वाले विश्वगुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, देवाधिदेव महादेव द्वादश स्वरूप में विराजमान उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, मंचासीन इस संस्था के महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय परमादरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस प्रभाजकाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी फूलपुरी जी महाराज और जार्डन के पास में ही विराजमान सोजत में देश के परम विद्वान वेदांत मार्तंड, सभी दर्शन एवं शास्त्रों के प्रकांड विद्वान, वेदों के ज्ञाता महामंडलेश्वर स्वामी चेतन गिरी जी महाराज और इसी संस्था के महामंडलेश्वर विश्व गुरु जी महाराज के परम कृपा पात्र जयपुर से पधारे महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज और संस्था को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय अवतार पुरी जी महाराज, साथ ही सभी को कंधे से कंधा मिलाकर सुचारू रूप से व्यवस्थित करने में सहयोग देने वाले हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय राजेंद्र पुरी जी महाराज, मंचासीन सभी संतवृंद और हमारे शिक्षक वर्ग जो देश के बच्चों का भविष्य बनाते हैं, सभी हमारे अध्यापकगण और देश का भविष्य हमारे छोटे प्यारे बच्चों, बड़ा ही सुंदर अवसर आज प्राप्त हुआ है। ओम दीप गुरुकुल जो विश्व प्रसिद्ध है, गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में नाम है, उसकी द्वितीय पाठोत्सव कहें वर्षगांठ कहें मनाया जा रहा है और आज इसी स्कूल के बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। क्योंकि मुझे याद आता है स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब विदेश गए थे तो उन्होंने भी एजुकेशन कॉलेज की भी ली थी और शास्त्र की भी ली थी। स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज ने भी कॉलेज की दीक्षा भी ली और साथ साथ में अध्यात्म और शास्त्रों की शिक्षा भी ली। इसलिए शास्त्र में आता है सा विद्या या विमुक्त, विद्या हमें वो नहीं चाहिए जो केवल हमें शिक्षा प्रदान करे, नास्तिक बनाए, विदेशों में जाकर के माता पिता के संस्कार को भूल जाएं, देश की संस्कृति को भूल जाएं। हमें विद्या वह चाहिए जो देश में रहें या विदेश में रहें, देश की संस्कृति, संस्कार, माता पिता का सम्मान और हमारे गुरुजनों का आदर सिखाए। मैं कई बार ये कहा करता हूँ, हम एजुकेशन तो लेते हैं, आजकल मैं चर्चा करूँगी उग्रवादियों की, बम विस्फोट करते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों को जलाते हैं, जगह जगह उपद्रव करते हैं, जन हत्या करते हैं, स्कूलों में बम विस्फोट करके बालकों की हत्या करते हैं। वो कितने पढ़े लिखे हैं पता है आपको? सब हाई एजुकेटेड है, सारे के सारे हाई एजुकेटेड है, MBA, MCA, MTech, BTech, IIT, IIM किए हुए, जो हमारा आपको बहुत कम शिक्षा मिलती है। लेकिन वो काम क्या करते हैं? बम विस्फोट करके लोगों को मारना, संस्कृति को समाप्त करना, देश में गद्दारी पैदा करना, देश में विस्फोट करके सबको उजाड़ना, संस्कृति उजाड़ना, संस्कार उजाड़ना, सब कुछ करते हैं। और याद रखना, एक हमारे नरेंद्र मोदी जी भी पढ़े लिखे हैं, योगी जी भी पढ़े लिखे हैं, और ये संत महापुरुष जो बैठे हैं, ये सब लोग भी पढ़े लिखे, हम लोग भी पढ़ लिख करके आए। मैं पहले सिविल का इंजीनियर हूँ, उसके बाद मैंने वेदांताचार्य, षड्दर्शनाचार्य, फिर मैंने वेदों के ऊपर PhD किया। पढ़े लिखे आप भी पढ़ेंगे, एजुकेशन बहुत जरूरी है, एजुकेशन नहीं होगी तो पशु के समान जीवन बिताना पड़ता है, पशु की तरह। एजुकेशन कोई भी हो, मैं कहा करता हूं हर जगह जाकर के, माता पिता कितनी भी मेहनत करें, चाहे दो रोटी कम खा लेना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना, अच्छे कपड़े की जगह फटे कपड़े पहन लेना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना, समय आ जाए मकान को भी गिरवी रख करके बच्चों को पढ़ाना, और समय मिले तो माताओं से अनुरोध करता हूं, सोने चांदी के अपने जितने भी गहने हैं उनको भी गिरवी रख करके बच्चों को पढ़ाएं। एजुकेशन नहीं है तो जीवन व्यर्थ है, लेकिन वो एजुकेशन आतंकवादियों की तरह नहीं होनी चाहिए। हम बच्चों को IIT, IIM, MBA, MCA, MTech, BTech कराते हैं, लेकिन वो आतंकवादी बनकर के जनता को नुकसान पहुंचाते हैं, बच्चों को मारते हैं, संस्कार संस्कृति को नष्ट करते हैं, देश को पथभ्रष्ट करते हैं। और यदि वही संस्कृति, संस्कार संस्कृति से संपन्न होगी, MTech, BTech करें, IIT, IIM करें, MBA, MCA करें, लेकिन वो संस्कार के सहित होगी, तो वही नरेंद्र मोदी और योगी जी जैसे देश पर गौरव करके देश के नाम को, आपके नाम को, मारवाड़ के नाम को विश्व के कोने कोने में पहुंचाएंगे। मारवाड़ में पढ़े लिखे तो लाखों लोग हैं, लेकिन स्वामी महेशानपुरी जी ने जो कार्य करके दिखाया, विश्व के 100 से ऊपर देशों में भ्रमण करके सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है। वो चाहते तो फैक्ट्रियां खोल सकते थे, वो चाहते तो होटल खोल सकते थे, वो चाहते तो और सब कुछ खोल सकते थे, लेकिन खोला क्या? ओम दीप गुरुकुल विद्यालय खुला है, मेडिकल कॉलेज खोले हैं, गौशालाएं खोली हैं, किसके लिए? आप सबके लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए, संस्कार के लिए, इस सनातन का नाम पूरे विश्व में। संत पैसा आएगा तो सनातन के लिए लगाते हैं, विश्व में नाम है ओम दीप गुरुकुल का। कल आप भी कल विदेश में जाएंगे तो आप कहेंगे हम उस ओम दीप गुरुकुल विद्यालय के पढ़े हुए हैं जहां स्वामी महेशान जी महाराज ने बनाया, जिसका नाम वर्ल्ड गिनीज ऑफ बुक में नाम है। आपका एक स्वाभिमान होगा हम वहां पर पढ़े हुए, हम लोग भी कहते हैं कि हम उस स्कूल में पढ़े हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी का नाम लेते हैं, उन्होंने कहा था कि जिस देश की संस्कृति मजबूत होगी वो देश मजबूत होगा, और जिस देश की संस्कृति कमजोर होती चली जाएगी वो देश मिटने में समय नहीं लगता है। आज हमें अपने देश की संस्कृति संस्कार को विश्व के कोने कोने में पहुंचाना है। वो कब पहुंचेगी? जब हमारे एजुकेशन के साथ साथ संस्कार और संस्कृति होगी। स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज के जीवन में देखिए, संस्कार संस्कृति को लेकर के विश्व 100 से ऊपर देशों में जाकर के प्रचार किया है।

जॉर्डन का नाम विश्व के कोने कोने में है, विश्व के कोने कोने में है। और अब वही दायित्व हमारे फूलपुरी जी महाराज, राजेंद्रपुरी जी महाराज, ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज, अवतारपुरी जी महाराज, इन सबके कंधों पर है। ऊंचाई पर पहुंचना तो सरल होता है, लेकिन ऊंचाई पर टिके रहना सबसे कठिन होता है। आज ये संस्था इतनी बड़ी बनी है, कल आप भी गौरव करेंगे। आप कहीं जोधपुर में आएंगे तो हम कहेंगे वो बालक हैं जो स्वामी महेशानंदपुरी जी महाराज के विद्यालय में पढ़े हुए, विश्व में जिनका नाम है। इस नाम को बरकरार रखना है, नाम को विश्व के कोने कोने में पहुंचाना है। हमें वो संस्कृति नहीं चाहिए जो अमेरिका में एजुकेशन लेकर के अमेरिका में नौकरी करते हैं और माता जी का शरीर शांत होता है तो वहां से चाचा कहते हैं, चाचा जी वीडियो कॉलिंग करके देख लेंगे, माता जी की अंतिम क्रिया आप कर दीजिए। ऐसी संस्कृति, ऐसी एजुकेशन हमको नहीं चाहिए। हमको वो संस्कृति चाहिए जो माता पिता से जुड़ाव हो, जिन्होंने फटे कपड़े पहन करके बच्चे को पढ़ाया, भूखे रह करके बच्चे को पढ़ाया, कर्जा लेकर के बच्चे को पढ़ाया, और वो अमेरिका में जाकर के कहते हैं कि हम लाख रुपए खर्च करके नहीं आ सकते। आप अंतिम संस्कार कर दीजिए चाचा जी। वो संस्कृति हमें नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जो माता के चरणों में बैठ करके माता का चरण स्पर्श करे, पिताजी के चरणों में बैठ करके पिताजी का चरण स्पर्श करे और कहे, पिताजी आप धन्य हैं, हम धन्य हैं कि आपके जैसे माता पिता हमको मिले। जो गौरव करे अपने माता पिता पर, अपनी संस्कृति पर, संस्कार पर, अपने मारवाड़ पर। इसलिए स्वामी फूलपुरी जी महाराज, स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज, अवतारपुरी जी महाराज, राजेंद्रपुरी जी महाराज, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए और महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए, इन्होंने वो वट वृक्ष लगाया है आने वाले लाखों सालों तक बीज देकर के विश्व में नए ऐसे गुरुकुल, नए ऐसे विद्यालय, नए ऐसे मेडिकल कॉलेज खुलवाता रहेगा। इसलिए महाराज श्री के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। आप सब बच्चों को साधुवाद कि आप आगे चल करके विवेकानंद जी की तरह देश के कोने कोने में निकले, देश के कोने कोने में सनातन धर्म की ध्वजा पताका को फहराएं और गर्व महसूस करें कि स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज ने देश के 100 देशों, विश्व के 100 देशों से ऊपर सनातन संघ को पहुंचाया। आप देश के 180-200 के आसपास देश है, 202 हैं या 203 है इस समय वर्तमान में, उन सब कोनों में जाकर के इस ओम दीप गुरुकुल के नाम को वहां पर पहुंचाएं। आपके लिए साधुवाद, आप धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।

शास्त्र में अनंत हरि कथाएं कहे सुने बहुविधि सब संताएं। मुझे पूर्व हमारे गुरुजनों ने

पूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति, सभ्यता, योग, वेदांत, पर्यावरण, विश्व शांति, मानव मात्र के कल्याण हेतु जो कार्य किए हैं उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चले, इतना कह करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद। विशेष करके हमारे आत्मप्रिय या आत्मा आश्रम के सब शुभचिंतक, ये सभी स्वामी जी महाराज निवेदन करना चाहूँगा कि स्वामी पूज्य गुरुदेव के ये हमारे परंपरा के सभी शुभचिंतक हैं। और कार्यक्रम रात्रि को ही मुझे जानकारी मिली, कार्यकर्ताओं की व्यस्तता थी, इधर इधर सारे व्यस्त थे और उनका कहना था कि कार्यक्रम जो है शीघ्र करना है, ये विलम्ब नहीं होना चाहिए। तो रात्रि को भूमिका बना करके आप सभी को हमने शायद जल्दी जल्दी फ़ोन से निवेदन किया होगा, ना समाचार हुआ, ना पत्रिकाओं के माध्यम से किसी को संदेश मिला है, लेकिन आप कुछ ही जो है सूक्ष्म समय में आपने अपना अमूल्य समय निकाल के आप सभी पधारे, उसके लिए पुनः बहुत बहुत आभार एवं हार्दिक अभिनंदन। बड़ा अभी चिंता का विषय है कि विश्व गुरु जी इस हमारे इस जो है कार्यक्रम के बीच में उपस्थित नहीं है, उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। ऐसे मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पर फिर भी भगवान के लिए, गुरुओं के लिए और समाज के लिए ये चोला पहना है तो आपके बीच खड़ा हूँ। और साथ ही साथ में गुरुदेव जहाँ विराज रहे हैं वहाँ से भी आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा दूरभाष के माध्यम से कि उनका संवाद हो पाएगा या नहीं, नहीं ये नहीं कह सकता, लेकिन आशीर्वाद जरूर आपको जो है दूरभाष के या जो है मोबाइल के माध्यम से हो जाएं, ये कोशिश करता हूँ दो मिनट में आपसे। पुनः बहुत बहुत पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और हरिओम। दीप नारायण भगवान की, हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद पुरी जी महाराज की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, हरिओम।

0: ने की अलकपुरी जी महादेव देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

0: element, the second tattva, beside the akasha, the fire element was created. And that first very moment is that is was the beginning of the Guru Purnima.
1: गुरु का मतलब है गुमन अंधकार रूमन है प्रकाश अंधकार मेट के अपनी भूल है अज्ञान है वही अंधकार है उसको मेट के प्रकाश देने वाले सत्य ज्ञान देने वाले अज्ञान को हटाने वाले वही सतगुरु होते हैं गुरुदेव को पहचानने वाले बहुत थोड़े भक्त होते हैं गुरुदेव को पहचाने वो स्वयं गुरु रूप परमात्मा रूप हो जाते हैं और गुरुदेव की कृपा होती है आत्मा का ज्ञान हो जाता है लोक परलोक का ज्ञान हो जाता है स्वयं भगवान ने मानव को पवित्र होने के लिए मानव को सुखी होने के लिए ये गुरु पूनम का पर्व बनाया है
2: Everybody wants to personally approach Holy Guruji and Swamiji, to see him and to be seen, to touch him and to be touched. This is a privilege of Guru Bhakta. Bhajans, the spiritual songs and odes to gurus, are sung all night, on this night of an unforgettable full moon.

0: In this country, wherever Gurudev appears, he is accepted as a source of joy, a source of wisdom.
1: क्योंकि कहा है कि वंदो भारत वर्ष भूमि जहां सतगुरु दर्शन होए आत्म ज्ञान यहीं मिले और देश नहीं कोई। ऋषि मुनि सब संत जन और करे भारत की आस, भारत बिन मिलता नहीं आत्म ब्रह्म प्रकाश। श्री पूज्य भगवान दीप नारायण दीना ब्रह्म उपदेश, माधवानंद आनंद भया पाया भारत देश। तो वी नीड ऑल टू हेल्प अवर सेल्फ टू प्रोटेक्ट द कंट्री। We need to protect the Sanatan Dharma, and we should and we must protect all religions. No religion should be discriminated. No any culture should be discriminated. No any country should be discriminated. We have to respect them as they are.
0: Finally, the day of ceremonial bathing has come.

0: परमार्थ जिनका धर्म है, संकल्प अधर्म विनाश है। धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की। धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की।
1: बोलिए महेश्वरानंद महाराज की।
2: After the dynamic visit to Maharashtra, here we are again at the Jadan Ashram, in a place of peace, a peace needed for the depth of working with oneself, for the depth of yoga. Here, we come closer to the inner silence out of which all important answers arise. This ashram is a garden, an oasis of life.

0: Even though physically absent, Guruji was inevitably the centre of all attention. A photobiography of Guruji's life was solemnly presented.
1: स्वामी जी मातानंद जी महाराज साहब तो आज हमारे बीच में नहीं है क्योंकि वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं ऐसे बताया गया, पर उनका संदेश हमारे बीच में है, आपके बीच में है। लंबे समय तक कैसे उन्होंने वो काम किए जिससे कि आत्मिक सुख मिले, आत्मा को शांति मिले, सद्भाव का वातावरण कायम हो, एक लंबा जीवन उन्होंने बिताया और किस प्रकार से वे समाज को, देश को, दुनिया को संदेश देते गए। ये सौभाग्य है पाली जिले का, देशूरी तहसील का और निप्पल गांव का जहाँ वो पैदा हुए। उन्होंने महान संत स्वामी दीपनाथ जी की सानिध्य में रह के संकल्प किया और वही संकल्प संदेश के रूप में आज सबके सामने है।
2: टुडे विद अस large number of our foreign friends are also here. I would like to acknowledge their dedication to this institution. I welcome on behalf of all farmers here that looking to your devotion, it's really appreciable and it is amazing. It is beyond our thought and thinking.
3: So, बाबूजी मन से यहाँ हैं, तन से वहाँ हैं। गुरुजी हमेशा यही कहते हैं, नशा पत्ता छोड़ो, जाति पाति का भेदभाव छोड़ो, सर्वधर्म का सम्मान करो जिससे कि विश्व शांति बनी रहे, प्राणी मात्र की रक्षा हो और मानव का भी कल्याण हो। बोल श्री दीप नारायण भगवान की। धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी गुरुदेव की।
0: Today, our stay in India has come to an end. The heart of India is an ashram. An ashram is the home of the soul, and the soul of that home is a Gurudev. His word comes from an eternity and lasts for an eternity.
4: God is endless and His glory is endless. He is beyond our imagination, beyond the borders and beyond everything.

ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव।

0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय, श्री सत गुरुदेव की जय।
1: अलकपुरी जी महादेव, माधवानंद जी भगवान, सत्य सनातन धर्म, मात पिता गुरुदेव की, ओम शांति शांति शांति।